सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या

प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, पूजो सदा हमारे पच्छा। श्री आस तुझ जू

घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै।

उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा, शिगरे सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे आस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग

नानक सुनहु संतो शब्द तरु प्यारु, साचा नाम मेरा आधारु। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया, दुर्कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित।

प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लंत्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता जिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्या नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत तो देख तेग पते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब की सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे रखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाय दतार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां नूं पंथ तों विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो हे निमाणियां दे मान सतगुरु नितानियां दे तान सतगुरु नियोटियां दे ओट गुरु गरीब नवाज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी का पावन पवित्र प्रमाण है धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे दी मां वाक अनुसार साहिब सतगुरु धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी के पावन पवित्र पहले प्रकाश पुरब दियां खुशियां दे अंदर गरीब नवाज अमृत वेले तो आप जी के दर घर अंदर बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां आप जी दियां रहमतां प्राप्त कीतियां गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ इस वक्त संध्या दा समा जान के सो दर रह रास है बाणी दे पाठ कीते गए गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी अते आप जी के पावन पवित्र पहले प्रकाश पुरब की खुशी दे अंदर जो कल रोज तो 31 राग दरबार गुरमत समागम प्रारंभ होए हन गरीब नवाज बेअंत गुरु घरों दरों सरों वरसाए हुए रागी सिंघां ने कीर्तनिया सिंघां ने आप जी की अमृतमई बाणी का राग वध गायन किया सतगुरु जी आप जी की पावन पवित्र बाणी का कीर्तन करदिया सो दार रह रास है बाणी दे पाठ करदिया आप जी के दसरिया पासों हुई बेअंत बेअंत भुला आप जी ने मुआफ कर देनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना चढ़ती कला बख्शिश करके नवाजना जियो बेअंत संगतां ने हाजरियां भरिया भेटावां अर्पण कीतियां बेअंत संगतां ने मीडिया के माध्यम राही हाजरियां भरिया सेवावां भेजियां समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइया विच बरकतां पाउणियां घरां विच सुख वरतौणी सच्चे पातशाह जी कृपा करनी रहमतां करनियां आप जी के दर घर दे सेवादार सरदार महिंदर सिंह जी बाजवा सच्चे पातशाह जी तिन्हां दे समूह परिवार वल्लों सिंघां वल्लों अरदास बेनती है आप जी बाजवा साहिब नूं देह रोगता ती दात बख्शिश करो चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजो गरीब नवाज कृपा करो पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके नवाजो जी आप जी के पावन हजूर पंचामृत कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वर्तन दी आग्या होवे सतगुरु जी उपरंत कृपा करो पावन पवित्र बाणी दे कीर्तन करन दी आग्या होवे जी अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करनी सही प्यारे मेल
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੀਮ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨ

0: आओ अगला प्रोग्राम जो है आप जी सदन करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही भिज के कीर्तन करते हैं भाई करमजीत सिंह शान जी, सारे जत्थे का बहुत धन्यवादी हाँ। उस्ताद रघुवीर सिंह जी का, गुरप्रीत सिंह जी, सुख अमृत सिंह जी, सारे बच्चों का भी बहुत धन्यवादी हाँ। हुण मैं बेनती करता हाँ डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी स्टेज पर आ जाए। डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी बहुत ही सुरीले कीर्तनी हैं, सानू इन्हां ते बड़ा माण है। अज दो रागों विच ये गायन कर जा रहे हैं, राग बिहागड़ा ते एक मिश्रित राग है राग आसवा काफी। इन्हां दे नाल संगत कर रहे हैं गुरप्रीत सिंह जी दिलरबा, सुख अमृत सिंह जी दिलरबा। ज्यों ज्यों स्टेज ते आई जांदे आ मैं नाम बोली जाना इन्हां दा। उस्ताद रघुवीर सिंह जी नाल जोड़ी ते संगत कर रहे हैं, ते नाल अनूप सिंह

राग आसा काफी, अरोह दे विच आसा, अवरोह दे विच राग काफी। मिश्रित राग है आसा काफी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, पंचम पातशाह दा शब्द है। राहो दी पंक्ति है, माण निमाणे तू धनी तेरा परवासा, बिन साचे अनटेक है सो जानो काचा। आओ इस राग दा, इस गुरु शब्द दा, इस राग विच गायन करिए जी।

कृपया विश्वास समझिए। राग पुकारी दे शब्द है जी निर्गुण राग लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। ये बंदिश प्रिंसीपल सुखवंत सिंह होना दी है, मेरे बड़े प्यारे मित्र ने। वो रागां दे विच बड़िया सरल ते संगती रीतां उन्होंने बहुत बनाईया ने। पापी सारे नूं बेनती है सारे ही कृपा करियो, बड़ी सिंपल रीत है।

नाम तन है तन है तन है गुरु अर्जन देव जी तन है तन है तन है तन है तन है तन है गुरु हर गोविंद साहेब जी तन है तन है तन है तन है गुरु हर गोविंद साहेब जी तन है तन है तन है श्री हर राय साहेब जी तन है तन है तन है तन है श्री हर राय

है तन है तन है गुरु गोविंद सिंह जी तन है तन है तन है तन है गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है तन है तन है तन है प्यार पंथ खालसा तन है तन है तन है तन है प्यारी साध संगत जी तन है तन है तन है तन है तेरी

0: संत जना मिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: अवर उपाव सब मीत बिसारो,
1: कर्ण गमन विध में उतारो,
0: कर्ण कारण सो प्रभ समरथ,
1: दृढ़ कर गौ नाम आधार,
0: एहो तन संचो हो वो

0: जिस तन को चार कुंट उठतावे
1: सो तन हर सेवा ते पावे
0: जिस सुख को नित बाछे मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस सोभा को करे भली करनी
1: सा सोभा भजहर की सरनी
0: अनक उपावी रोग ना जाए
1: रोग मिटे हर अवख दिलाए
0: सर्व निदान मैं हर नाम निधान
1: जप नानक दरगह परवान
0: मन पर बोध

0: गुण गावत तेरी उतर समैल
1: बिनस जाए मैं लिख भैल
0: उहे अचिंत बस सुख नाल
1: शाड़ से हर नाम संभाल
0: शाड़ से आनक सगली मना
1: साध संग पावह सच तना
0: हर पूंजी सांच कर हो व्यवहार
1: यहाँ सुख दर गय जयकार
0: सर्व निरंतर

0: तब बैर विरोध के संग कमारत
1: जलेश का वर्ण चिह न जापत
0: तब हर्क सोग कहो किसै व्यापत
1: जब अपन आप बार ब्रह्म
0: तब मोह कहा किस होवत परम
1: अपन खेल आप बर तीजा
0: नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी
1: जब कहे हर अगम अपार
0: तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
0: तब शिव सकत कहो कि तठाए
1: जब आप है आप अपनी ज्योत तरह
0: तब कवन निडर कवन तक तरह।

0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
1: अब चित्र गुप्त के सपूषत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: अब कौम छुटे कौन बंधन बाते
0: आपनो आप ही अचर जा
1: नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: यह निर्मल पुरख

0: खाना जाय पसारा
1: जय बल सजा प्रथम संसारा
0: जय रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग भयो राव कहे भूपा
0: स्थित चकिनी
1: उत्पल खान बहर राज तेने
0: फूल राजा।

0: जिते उठ पाता
1: सकल मिले
2: करो रण काता
0: तब सरनी परे
2: तन के दोष दुख मरे
0: जवन पग परे तिहारे
2: तन के तुम साकर सब तारे
0: कल को एक बार।

0: तू मन मेरे दुख सब सारना
1: अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना
0: गलत सम्रत स्वामी सुख मन बसारे
1: कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
0: साहेबा क्या नहीं कर

जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरदे अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदावै ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अनिट कीता, तिना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देख देख पते बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहु दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो, हे निमाणियां दे मान सतगुरु, नितानियां दे तान सतगुरु, नियोटियां दे ओट गुरु गरीब नवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, आप जी की अपार कृपा बख्शिश मेहरामत दा सदका अज हफ्तावारी दीवान जो दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी के पावन पवित्र पहले प्रकाश पुरब नु समर्पित, अते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुरु का खिवै चंदोवा, उगवनो तै आत्मनो चौ चक्की कियन लोवा दे मां वाक अनुसार, धन धन धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी आप जी के पावन पवित्र गुरियाई दिवस नु याद करदिया, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी अमृत वेले दीवान सजे सजे दीवानंद राव जी के अमृतमई बाणी आसा की वार दे कीर्तन होए, छे पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ होए, गरीब नवाज आप जी की आगाध बोध बाणी दे कीर्तन करद्या सरवण करद्या हुईया बेअंत बेअंत भुला आप जी ने खिमा कर देनी, अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना, बेअंत संगतां ने हाजरियां भरिया तिल फुल भेटा आप जी के चरणा विच भेटा कीता, सभना दियां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनिया, सभना नूं दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना, मीडिया के माध्यम राही संगतां जुड़ियां सच्चे पातशाह जी सेवावां भेजियां, समूह संगत की हाजरी सेवा दर ते प्रवान करनी, तन मन धन दे नाल कीतियां सेवावां थाए पाउणियां, गुरमत अनुसार सभना दियां अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान करनियां, गरीब नवाज आप जी ने कृपा करनी, आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे, कृपा करो सतगुरु जी पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म तो उपरंत गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी जो अठवां सालाना गुरमत समागम कत्ती राग दरबार समागम परसों रोज तो प्रारंभ किए गए हैं, आप जी की कृपा सदका अज तीसरे ते अंतिम रोज के इकती राग दरबार गुरमत समागम होने हैं, आप जी ने कृपा करनी समूह सिंघां ते रागी सिंघां दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के अपनी बाणी दी शुद्ध ते स्पष्ट सरवण करवाउण दी सच्चे पातशाह जी आप जी ने दात बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, जितनिया भी संगतां ने महान
ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

गुरु प्यारी साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगतां दे चरणां च बेनती है कि 5-10 मिनट होर बैठन, जो साडे दूरों नेड़ियों रागी सिंह ते पहुंचे हन उन्हां दा धन्नवाद करना है। सो प्लीज इसे तरह बैठे रहो। गुरु महाराज की बड़ी अपार बख्शिश कृपा हुई है। पिछले 3 दिनों तो असी कीर्तन का आनंद माणते आ रहे हाँ। बड़ा ही आनंदमय माहौल बनिया होया सी, ते बड़ा ही रस आ रहा सीगा कीर्तन का सारिया नूं। मन तो नहीं करता सी कि इत्थे समाप्ति होवे, पर हर समय दे विच हर चीज़ चलनी चाहीदी है। सो सीधा मैं पहले इन्हां सारिया नूं धन्नवाद करदा, सारे रागी सिंघां नूं जिहड़े साडे कोल दूरों नेड़े पहुंचे हन, बहुत बहुत धन्नवाद। ते गुरु घर वालों सम्मानित इस रोपे का स्वीकार करनगे सारे, प्लीज इत्थे ही रहना। इहदे नाल अगे प्रोग्राम चलता रहेगा। प्रोग्राम साडा जिस तरह दस्या गया सी कि शहीद भाई जसवंत सिंह जी खालसा के संबंध में काफ़ी बुलारे आए हैं, तो उन्होंने सारिया ने हिस्सा पाना है। सो विदायगी के संबंध में मैं बेनती करांगा, सब तो पहला जिहड़ी साडी 31 राग कीर्तन दरबार कमेटी है उन्होंने मैंबरस भाई जे जे सिंह, प्रोफेसर दलबीर सिंह, गुरतेज सिंह, ये सारे इत्थे आके ज्वाइन करन। नाल धार्मिक कमेटी के मैंबरस प्लीज, सारे कमेटी के मैंबरस उत्थे बैठे हैं, प्लीज आके इत्थे ज्वाइन करो ताकि उन्हों का धन्यवाद कर सकीए। हर साल की तरह सात संगत बच्चों ने बड़ी गिनती से हिस्सा पाया, तुसी देखिया होना। सो बहुत बहुत बच्चों का धन्यवादी हाँ जिन्ह के पेरेंट्स उन्हों दूरों नेड़ों इत्थे लैके पहुँचे हैं। कई बच्चे ईस्ट कोस्ट तो मैरीलैंड तो आए हैं जस्ट फॉर दिस प्रोग्राम, इन्ना उन्होंने मन च उत्साह सीगा इहदे विच हिस्सा पाण दा। सबना पहले बेनती करांगा डॉक्टर गुरु नानक सिंह जी, डॉक्टर साहब दी बहुत भारी देन है 31 राग कीर्तन दरबार नूं प्रचलित करन दे विच। बड़े थावां थावां ते उन्हां नूं सम्मान मिलिया है इस संबंध दे विच। बोले सो निहाल। और पिछे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन्हां नूं सम्मानित किया सी। हाँ जी, बेनती करांगा उन्हां दे जिहड़े मैंबरस है ग्रुप, भाई गुरप्रीत सिंह जी, भाई राजविंदर सिंह जी, आओ जी।

है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आया की रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे जो सरदार

ब्रह्म तो ही बाणी उत्पन्न हो रही है ते मैं गुरमुखां नूं आख के सुना रहा हां। धन गुरु रामदास साहिब महाराज सोढ़ी सुल्तान कहिंदे दासन दास।

इतनी सेवा प्रवान करनी जी, भुला चुका दिखिमाओ भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी देगे जिते पासो पावन पवित्र कीर्तन सरवण करिए जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।